0: और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग

সুমিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী সুখ।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 14 तारीख व दिन है मंगलवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री तंजिन दोर्जी, मनपमित घोषक श्री संगे टशी, तकनीकी अभियंता श्री कमयम फो और शिखा डेकर, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गियारी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी चटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन

0: से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
1: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
2: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे

शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए,
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है वंदना भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। आज आप सुन सकेंगे तवांग मठ के लामा पिम्पा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तवंग मठ केलामा पेम्पा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे जयंता हजरेका की आवाज में चंद असमिया फिल्में व आधुनिक गीत।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे जयंता मुखर्जी की आवाज, जयंता हजरेकर की आवाज में चंद असमीय फिल्मी व आधुनिक गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे दोरजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग की तीसरी सेमेस्टर की छात्रा संग न्यूटन से वृक्षारोपण का महत्व विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं संग न्यूटन दोरजी खंडू राजकीय महाविद्यालय में तीसरे सत्र की छात्र हूँ। आज मैं वृक्षारोपण की महत्व विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहूँगी। उस हरियाली की जो न केवल हमारी पर्यावरण की शान है बल्कि पृथ्वी के संतुलन की पहचान भी। प्रिय श्रोताओं, पेड़ पौधे केवल हरियाली ही नहीं देते, वे हमारे जीवन की आधार भी प्रदान करते हैं। वे हवा को स्वच्छ बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को क्षरण से बचाते हैं और वर्षा के संतुलन को बनाए रखते हैं। वृक्ष हर मौसम में हमारे अनमोल साथी है। गर्मी में छाया बनकर, बरसात में सुरक्षित बनकर और हर पल जीवन सहायक बनकर। परंतु बढ़ती जनसंख्या शहरी के कारण पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। जहां कभी हरी भरी वन संख्या लहरती थी, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। इस स्थिति की बदलना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक वर्ष में कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करे तो आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण देने का हमारा संकल्प पूर्ण हो सकता है। पेड़ केवल प्रकृति का उपहार नहीं, वे हमारी विरासत है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें धरती को हरा भरा बनाने का, पर्यावरण को हरा भरा बनाने का और वृक्षारोपण को अपनी दैनिक आदत बनाने का। क्योंकि जब पेड़ बचेगी तभी जीवन बचेगा। आकाशवाणी से यह प्रस्तुति आपको समर्पित थी, एक स्वच्छ, स्वस्थ और हरी भरी पृथ्वी के नाम। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।
0: श्रोताओं अभी आपने सुना दोरजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग की तीसरी सेमेस्टर की छात्रा संग न्यूटन से वृक्षारोपण का महत्व।

0: विषय पर जन शब्द इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म डियर जिंदगी से। शब्द रचना है कौसर मुनीर के, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

अभी आपने सुना फिल्म जब तक है जान से गीत, नीति मोहन की आवाज में गीतकार थे गुलजार व संगीत था ए आर रहमान का। श्रोताओं आप सुन रहे कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म दिल धड़कने दो से। शब्द रचना है जावेद अख्तर की व संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

0: होगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे राहत फतेह अली खान, आशीष कौर और दानिश कुबाकची की आवाज में फिल्म सिम्बा से। शब्द रचना है रश्मि विराग की व संगीत है तनिष्क बागची का।

फिल्म दिल धड़कने दो के गीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

अभी आपने सुना फिल्म नोटबुक से गीत, कमाल खान की आवाज में गीतकार थे कौशल किशोर और संगीता विशाल मिश्रा का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में फिल्म सत्यमेव जयते से। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाज में फिल्म जुग जुग जियो से गीत को संगीत से संवारा था कनिष्क सेठ ने। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे कुमार द्वारा शब्द फिल्म मुन्ना माइकल से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल मिश्रा ने।

अभी आपने सुना फिल्म टू स्टेट से गीत अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीता शंकर एहसान और लॉय का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे बेनी दयाल और शेफाली अलवर्स की आवाज में फिल्म ये जवानी है दीवानी से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म भूत वन से गीत अखिल सचदेवा और मर्शिल गुजराल की आवाज में। गीतकार थे अखिल सचदेवा, संगीत था अखिल सचदेवा का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरे आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से विशाल ददलानी, पायल देव और साथियों की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी व अन्विता दत्त के, व संगीत है आर डी बर्मन और विशाल शेखर का।

फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर किसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:29 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन। राग है सोहनी व तबले पर संगत दिया है आनिंदो चटर्जी ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिल्ली कॉलोनी में आई बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरांग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स के लिए बेसिक यूएएस एवं सीयूएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। क्रिकेट में भारत का बर्मिंगम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच जारी और फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहा दो जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन

आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।

0: पहला एक दिवसीय मैच जारी और फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सास में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहा दो जहाजों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया है कि इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि MTL बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थित पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों का निशाना बनाकर किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया गया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किए जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्षों को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया है कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित दिलीदी कॉलोनी में आए बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपदा में घरों का नुकसान, पशुधन तथा सार्वजनिक अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से 500 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं और अनेक परिवार बेघर भी हो गए हैं। हालांकि संपत्ति के नुकसान तथा प्रभावित परिवारों की वास्तविक संख्या का आधिकारिक आंकलन अभी किया जाना बाकी है। जिला प्रशासन ने नुकसान का विस्तृत आंकलन करना शुरू कर दिया है, ताकि प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों की तैयारी की जा सके। सेला ब्रिगेड की देखरेख में भारतीय सेना ने आज सैपर दिरंग में एक फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए सेना ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। समारोह में वेस्ट कमिंग जिला उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार, 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राहुल मिश्रा, ADC दिरंग, पंचायत नेता गांव बूढ़ा और चुने गए छात्रों के अभिभावक शामिल हुए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSE 2026 को सफलतापूर्वक पास करने के बाद जांग और दिरांग के सीमावर्ती गांवों के कुल 25 छात्रों को वुड्स पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में दाखिला मिला है। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने चुने गए छात्रों और उनके माता पिता को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्रों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने और प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ सैनिक स्कूल में उनके दाखिले के लिए व्यापक इंतजाम करने में 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सराहनीय प्रयास

0: नेतृत्व की प्रशंसा की। ऐसी पहलों के माध्यम से भारतीय सेना नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सार्थक योगदान दे रही है। स्पेयरहेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयरहेड गनर्स ने 22 अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन के लगभग 120 एनसीसी कैडेट्स के लिए बेसिक अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएएस एवं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम सीयूएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये प्रशिक्षण राज्य में 22 एपी एनसीसी बटालियन पासीघाट तथा सिगार मिलिट्री सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को उभरती हुई ड्रोन तकनीक की जानकारी दी गई और आधुनिक सैन्य अभियानों में यूएएस तथा सीयूएएस की भूमिका के बारे में उनकी समझ को और मजबूत किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क शून्य की सुविधा प्राप्त होगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा असानी के दुखद निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने के उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जा रहा है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू हुआ। ताज़ा जानकारी मिलने तक इंग्लैंड बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में 80 रन बना चुकी है। श्रृंखला का दूसरा मैच केफर्ट में बृहस्पतिवार तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सस में डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा है कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा है कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Narang Koyang. India has expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against those attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among the combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al Bahia, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished a speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance.

이 먹고 맹마셔도 매셔도 먹는 게 어려라. 나를 분한테 넘겨 주시 어려라.

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग मठ के गेन थुप्तन सिंह और अन्य 10 लामा छात्रों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे इलाइट इंग्लिश स्कूल तवंग की तीसरी कक्षा के छात्र रिंचन दौरजी से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा व्हाई गॉड मेड टीचर्स। 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म बेमिसाल से चंद गीत, जिसमें पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और आरडी बर्मन की आवाज में, दूसरा गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार की आवाज में और तीसरा गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज में। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग, 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर सुनो प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत फिल्म बुच द प्राइड ऑफ इंडिया से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुने हमारे केंद्र से कल यानी 15 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे हरिहरन, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे जुबिन गर्ग और नीलिमा खातून की आवाज में चंद असमिया गीत।

कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की 5th semester की छात्रा लुप्सांग यंकी से छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी की आवाज में गीत, फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत, फिल्म नीरजा से कविता सेठ की आवाज में गीत, फिल्म केदारनाथ से देव नेगी की आवाज में गीत और फिल्म वेकअप सेठ से कविता सेठ की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन की आवाज में गीत, फिल्म तुम मिले से नीरज श्रीधर की आवाज में गीत, फिल्म क्रूक से निखिल डिसूजा की आवाज में गीत, फिल्म थैंक गॉड से जुबिन नौटियाल की आवाज में गीत, फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म शिवाय से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म बॉडीगार्ड से ऐश किंग और क्लिंटन सरेजो की आवाज में गीत, फिल्म यारियां से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीत और फिल्म रंजना से जावेद अली, कीर्ति सगतिया और पूजा एवी की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राख रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे कलाकार रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 कार्यक्रम मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नमथार, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री थुतन टाशी से, 5:35 पर कार्यक्रम नंगचे कलब और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे लामा रिंचन सवांग गिलोंग जम्पा तेंदर और लामा निमा चिरिंग से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगी दर्जी ड्रामा। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत फिल्म केसरी से बी परा की आवाज में। कल रात्रि 8 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि की ठीक 9 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूखा यही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

小江都把拉家咱罗去的家自己东坡恩中年的地震将把张雄坡养到坡左边三界日光的

Yes,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो

0: की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalation of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for a safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on the two vessels, MT Al-Bahia and MT Mumbai, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers.

0: cooperated teachers. He gave us special friends to help us understand his world and truly comprehend the beauty and the wonder of everything we see and become a better person with each discovery. When cooperated teachers, he gave us special guides to show us ways in which to grow so we can all decide how to live and how to do what's right instead of wrong, to lead us so that to be strong and learn how to be strong. Why God treated teachers in his wisdom and his grace was to help us learn to make our world a better, wiser place. Thank you.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना इलाइट इंग्लिश स्कूल तवंग के तीसरी कक्षा के छात्र रिंचन दोरजी से एक कविता। कविता का शीर्षक था व्हाई गॉड मेड टीचर्स। इसी के साथ कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे फिल्म बेमिसाल के चंद गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है आरडी बर्मन ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म बेमिसाल से गीत लता मंगेशकर और आरडी बर्मन की आवाज में गीत करते आनंद बख्शी व संगीत था आरडी बर्मन का। इसी के साथ आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:22 हुए हैं। श्रोताओं में प्रस्तुत है कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे किटपी ब्लॉक के असिस्टेंट कमिश्नर श्री संगे नरबू से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध विषय पर भाषण का अंश।
1: Basically, I want to discuss, I want to share my views and concern with you regarding the environment. And just a few days back, on 5th of this month, we celebrated World Environment Day. उसी का सिलसिले में लेके और तवांग का कंटेक्स में लेके थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी देखिए हमारा तवांग इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड मोस्टली द टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम एब्रॉड ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड कमिंग हियर एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन क्वांटम जंप बहुत बढ़ गया। एवरी ईयर टूरिस्ट का जो यहाँ फ्लो भी बढ़ रहे हैं एंड तवांग काफी सुंदर है एंड वी हैव वेरी लाइक सेक्रेट मॉनेस्ट्री विच इज कंसिडर्ड एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री and Tawang as such it's a very beautiful place. We have mountains, valleys and lush green forests. Even unlike other places yahan par sab kuch hai, yahan ka jal vayu sab kuch shuddh hai, saaf hai, and above all yahan ka atmi bhi bahut acha hai. They are very polite, they are very humble, they are very kind. But usi ka saath mein abhi hum dekh rahe hai hamara yahan ka jo environment hai day by day is getting destroyed. Matlab kharab ho raha hai, kharab ho raha hai, kharab ho raha hai. एंड उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी प्लास्टिक को देखा जाए तो रैम्पेंट, इनडिस्क्रिमिनेट, फ्लैग्रेंट, ब्लैटेंट, जो भी टर्म यूज करो, वी थ्रो इट, वी लिटर एवरीवेयर। ओनली हम कंसर्न है अपना घर का आंगन को। ऑलवेज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हाउस एंड ओन प्रेमिसेस एंड हमारा बाकी जो सराउंडिंग्स उसको केयर करें, बट वी डोंट बदर। जैसे हम अपना घर से लेके किसी खुला मैदान में छोड़ देगा, कहीं पानी में फेंक दिया, कहीं रिवर स्ट्रीम में फेंक दिया, कहीं लेक्स में फेंक दिया, कहीं पहाड़ में लेके छोड़ दिया, वी हैव लीस्ट बोदर। तो इसको देखते हुए काफी हमारा जो अभी का जो डीसी मैडम है नमगेल वामो, शी हैज दैट कंसर्न फॉर आवर तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड शी स्टार्टेड अ काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक। तो लास्ट ईयर हम लोग ने पूरा डिस्कस करके विद ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक आवर WWA Women Welfare Association of Tawang, उनका जो सहयोग के साथ में हम लोग ने एक बाजार में हर जगह में रेड किया था और अपील किया था कि दुकानदार को आपका कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथिन को नहीं देना है। तो कुछ दिन तक चला है एंड देन अलोंग विद दैट हम लोग ने प्रोग्राम में एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा था सेंसिटाइजेशन के लिए प्लास्टिक का क्या हानिकारक है, उसका हाजर्डस और हार्मफुल, और आगे डाउन द लाइन जाके हमारे लिए हमारा जो मैराइन लाइफ है, हमारा बाकी जो स्पीसीज है फ्लोरा एंड फौना, हाउ इट कैन इंपैक्ट ऑन दोस लाइक लिविंग बींग्स, जो हमारा एक पार्ट है, हमारा इकोसिस्टम, हमारा इकोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनके बिना हम नहीं जी सकते, तो उसको कैसे इंपैक्ट करता है। एंड सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्स भी निकला था फॉर आई गेस 24 जून 2025 में स्ट्रिक्टली तौंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का कैरी बैग का यूज करना बंद के लिए एक ऑर्डर भी निकाला था। तो कुछ महीना तक चला है एंड वी ऑल्सो बींग इन द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को करना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ बाकी काम के चलते हम लोग एक्चुअली रेगुलरली वी कुडंट कंडक्ट रेड और चेकिंग। तो बाद में देखा काफी बढ़ गया, जहां तहां कचरा है फेंक दिया, उधर फेंक दिया, नोबडी टेक्स केयर। लेकिन आप देखिए आपका हमारा यहाँ पे जहां पर हम लाइफ थ्राइव करता है, लाइफ फ्लॉरिश करता है, कौन सा प्लेनेट है? सिर्फ अर्थ है ना। डू यू एग्री और नॉट? मार्स में और जुपिटर में और सैटर्न में लाइफ फ्लॉरिश करता है क्या?

लाइफ थ्राइव करता है क्या? नहीं करता ना. मदर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ फ्लोरिशेस, वेयर वी सस्टेन, वेयर वी एग्जिस्ट एंड वेयर वी विल थ्राइव इन डेज टू कम. लेकिन अगर हम इसी प्लैनेट अर्थ को अगर हम एवरी डे हम इसको हार्म करते रहेगा और इसको डिग्रेड करते रहेगा, आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके हमको सस्टेन कर पाएगा? व्हाट डू यू थिंक, सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. जैसा भी आपका एक माँ है, अगर माँ को आप जितना तकलीफ जगा देगा, अल्टीमेटली आपका माँ एक दिन आपको सरेंडर कर देगा, बोलेगा नहीं अभी बस बेटा, बस अभी हो गया, बस बेटी, बस अभी मैं थक चुका हूं. अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ, हमारा एनवायरमेंट, इफ शी हैड ए वॉइस टू से, देन शी कुड हैव सेड कि बस बेटा बस माफ कर दो, अभी नहीं सके और हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके. तो सेम थिंग इफ वी जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस, टाइम हैज कम टू थिंक ओवर इट. अगर अभी नहीं तो बाद में कभी नहीं. अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इश्यू है, एंड आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया है, हर चीज आदमी के पास अवेलेबल है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल आजकल फिंगर टिप्स में, आपका गूगल हो चाहे जेमिनी हो चाहे चैट जीपीटी हो चाहे क्लाउड हो, किसी भी पूछो आप जो भी पूछो, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप, आई मीन इन योर स्मार्टफोन. एंड एवरीबॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट नाउडेज, कोई भी बुद्धू नहीं, कोई भी अनजान नहीं, कोई भी इनोसेंस नहीं, सब सेंसिबल है. लेकिन इसी सेंसिबल का दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव बिकम इनसेन, इनसेन हो चुका है हम लोग, सेनिटी खत्म हो गया, इनसेन हो गया. तो मैं एक्चुअली यहां पर आप लोगों को बीच में क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि आप लोग हमारा फ्यूचर है, हमारा वी कॉल यू आर्किटेक्ट, हमारा फ्यूचर है. बोलता ना नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर सिर्फ हम बोलते रहते हैं, लेकिन आगे जाके जस्ट लाइक हमारा इडी साहब ने यहाँ पर बताया कि आप आगे जाके यहाँ पर खड़ा होगा आज दिन, हमारा एसपी साहब ने इतना अच्छा से ड्राफ्ट को लेके ये बताया. तो ड्राफ्ट के साथ में हमारा एनवायरमेंट को बचाना और प्लास्टिक का यूज को कम करना, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हमारे लिए कंसर्न है, एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट प्रोएक्टिवली. अगर अभी से अगर नहीं करेगा, आपने सुना होगा प्लास्टिक वगैरह के आगे जाके नदी में जाता है, नदी कंटामिनेट होता है, आगे जाके मैरिन लाइफ, जो मैरिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फीड करते हैं, जो हम लोग खाते हैं आगे जाके मच्छी वगैरह, उसमें वो केमिकल प्लास्टिक का माइक्रोन्स लेवल में आ जाता है और हमारा पेट में जाके हमको तरह तरह का बीमार हो सकता है. सेकेंडली अगर आप ऊपर जाएगा पहाड़ों में जाएगा, बोतल को लेकर प्लास्टिक बोतल इंडस्ट्री में फेंकेगा, वो जाके पानी में जाके पानी कंटामिनेट हो, फिर हम जाके तरह तरह, हम सोचते हैं कि प्लास्टिक को फेंक देगा वो मेरा काम खत्म, लेकिन आगे जाके वो जाके हमारा पूरा सोयल में जाएगा, सोयल इरोजन से लेके सोयल का फर्टिलिटी को पूरा खत्म करके लास्ट में जाके आपका जो प्रोडक्टिविटी को खत्म करेगा. तो प्रोडक्टिविटी खत्म होगा, हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या होगा, हमारा स्केसिटी होगा, फूड स्केसिटी होगा, फैमिन वगैरह हो सकता है. तो उसका अगर रेमिफिकेशंस को अगर देखा जाए तो बहुत वाइड है. तो इसको देखते हुए हम सोचते हैं कि आप जाके एक प्लास्टिक के अगेंस्ट में, जो क्रूसेड अगेंस्ट प्लास्टिक है उसके अगेंस्ट में एम्बेसडर बन सकते हैं. अगर अभी हम लोग ऐसा है तो वी फेल, हम लोग फेल हो चुका है. एक्चुअली जो गंदगी दिखाई दे रहा है आप लोगों ने नहीं बनाया, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ने बनाया. हम जब छोटा था मेरा, हम लोग का माँ भी वेरी हार्डली वी कुड सी यूजिंग कैरिंग कैरी बैग, उस वक्त अलग थैला हुआ करता था उसमें ले जाता है, ये हमारा जो ठोंगा जो कागज का हुआ करता है. लेकिन हमारा जो पूर्वजों ने, हमारा मेरे पेरेंट्स ने शायद इन्वायरमेंट को इतना डैमेज नहीं किया जितना हम लोग ने डैमेज किया, हम लोग ने डैमेज किया. तो उनका समय में प्लास्टिक यूज नहीं होता, लेकिन हम लोग का समय क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत कंफर्ट चाहते हैं, हम चाहता नहीं कि भूखना चाहता नहीं, हम बैग लेना नहीं चाहते, दुकान में जाके सिंपली डिमांड करते हैं कि दे दो. अरे आप घर से थैला लेके जाओ ना, हो जाएगा ना, उसमें थैला में आ जाएगा. तो एक इंडिविजुअल लेवल अगर आप सब में से अगर प्रण ले लेगा, अगर ये प्लेज ले लेगा कि एक एक बच्चे अपना घर में जाके माँ पिता जी बताएगा कि नहीं करना है, ये जाके आगे हमारा फ्यूचर के लिए खराब है, हमारा पूरा एनवायरमेंट को खत्म करेगा, हमारे जेनरेशन को ये हार्म करेगा, आने वाला कई पीढ़ी को इम्पैक्ट करेगा. अगर ये चीज अगर आप मन में ठन लेगा, अगर आप कन्विक्शन से इसको लेके मैसेज को लेके अगर माँ पिता जी को बताएगा, इफ यू डिस्कस इवन विद देम ऑल्सो और आगे जाके एक्सप्लोर करें क्या हो सकता है, इवन यू कैन गूगल क्या हो सकता है प्लास्टिक से क्या हानि कर, तो आप लोग सब पता चल जाएगा. तो ये अगर मैसेज को लेके अगर घर घर में अगर आप एक एम्बेसडर के रूप में, एम्बेसडर ऑफ क्रूसेड अगेंस्ट यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग, अगर आप एक ही बच्चे आज यहाँ से एक एम्बेसडर बनकर निकल के आएगा, तो मैं समझता हूँ पूरा मुझे बिलीव एंड आई होप आई एम टोटली अपबीट एंड आई एम सेइंग दैट इट विल कम, दैट टाउन विल बी फ्री फ्रॉम

0: ये सब आपको टर्न लेना पड़ेगा। हम अकेला से नहीं होगा, हमारा एडी साहब अकेला से, हमारा एसपी साहब से नहीं होगा, हम सब मिलकर सिर्फ अर्बन वाला करेगा, अर्बन डिपार्टमेंट करेगा अर्बन का काम। और हम लोग सीनियर्स लोग भी, हम लोग यहाँ पर जितना भी मैडम्स है, टीचर्स है, ऑफिसर्स है, हम सबका भी दायित्व बनता है। हमने बहुत कम देखा है कि हमारा ऑफिसर, हमारा हम लोग, मैं खुद भी हूँ, हमारा जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी है, हम भी कितना केयर करते हैं, कितना इनिशिएटिव ले गए, बहुत कम। लेकिन अगर अगर हम अभी नहीं लेगा तो ए डे विल कम, जब ये बच्चा लोग बड़ा होके जब हम लोग एज होगा, बोलेगा दे वेयर द वंस हु स्पॉइल्ड, हु डैमेज आवर ओनली प्लेनेट होम वेयर लाइफ कुड थ्राइव, अभी लाइफ नहीं है, एक्सटिंक्शन में आ गया, एक्सटिंक्शन क्राइसिस में आ गया। तो ये जो बोलने का मौका हम लोग को नहीं लेना है। हमारा जो जितना भी यहाँ पर जो टीचर्स है, मैडम्स है, सर्स है, ऑफिसर, इवन मी, तो ये मौका जो आप लोग बच्चा लोग आप लोग मौका देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम नाउ, अगर आप ये मैसेज को लेके सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग नहीं लेना है। अभी दुकान वाला क्या बोलता है, दुकान वाला ये बोलता है कि डिमांड करता है। तो मैं आप सबसे, जितना भी आप स्टूडेंट्स है, आज से आप लोग प्लास्टिक कैरी बैग डिमांड करेगा नहीं करेगा ना? Do you want to keep our town clean and safe? Yes or no? Okay, तो आज आप लोगों ने सबने यहाँ एक टर्न लिया, देखो आज से आप कैरी बैग डिमांड नहीं करेगा, पॉलीथिन बैग डिमांड नहीं करेगा, और कम से कम कोशिश कीजिए कि हम भी प्लास्टिक को कम से कम यूज करेगा। आप दुकान में जाते हैं, रैपर्स में आते हैं, कंकल चिप्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, कितना इसका आपको हेल्थ में डैमेज करता है वो आपको मालूम होगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सकेगा जंक फूड तो मत खाइए, प्लास्टिक का पैक जितना हो सके फ्रेश फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, प्लास्टिक में जितना भी है कवर्ड पैकिंग आता है उसको कम से कम यूज कीजिए। जितना अगर हम कम यूज करेगा उतना ही हमारा सराउंड में प्लास्टिक कम आएगा, उतना ही हमारा मदर अर्थ को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर हम अभी से ये नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग यहाँ पर रह नहीं सकेगा, एंड इट विल बी टू हॉट, गंदगी होगा, टू मच पॉल्यूटेड होगा और अनसेफ होगा रहने के लिए। तो हम नहीं चाहता कि हमारा जेनरेशन, आप जैसे बच्चे लोग जो आगे इतना एक प्रोमिसिंग, इतना आगे जाके बहुत कुछ करने वाला अपने देश के लिए, अपना सोसाइटी के लिए, तो आपका जो फ्यूचर, आपका जो एनवायरनमेंट जो आपके लिए है उसको हम डैमेज नहीं करना चाहते हैं। तो मैं वंस अगेन आप सभी बच्चों से, आप लोग यहाँ से एम्बेसडर बन के जाइए और माँ विदेश का सर बताइए कि आप भी दुकान में जाके बिल्कुल कैरी बैग डिमांड नहीं करना है। ये तवांग को साफ रखना, सेफ रखना हम सब का कर्तव्य है। अगर तवांग का हम साफ नहीं रखेगा, सेफ नहीं रखेगा, तो एक दिन मदर अर्थ पे गुस्सा होकर उसका रात, उसका कहर हमारे ऊपर बरसेगा और हम लोगों पर बहुत भारी पड़ेगा। अभी आपको इतना रियलाइज नहीं करेगा, बट इन डाउन द लाइन आफ्टर 10 ईयर्स, जब आप लोग हम लोग का जगह में होगा 10 ईयर्स, तो उस समय एक बात छेड़ा था उन्होंने, हमने नहीं छेड़ा, सबने छेड़ा ये, लेकिन कान में किसी ने ध्यान में नहीं लिया, तो ये बात छेड़ा था। आज हम लोग के लिए कितना हकीकत साबित हो रहा है आपको रियलाइज होगा। तो बेटर लेट देन नेवर बोलता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, अभी से शुरू करना है, लेट नहीं रखना है। अगर अभी से निपिंग एट द बट नहीं करेगा तो हमारे लिए समय बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो मैसेज को लेके बोलता ना, प्रोवोक थॉट्स इंस्पायर एक्शन बोलते हैं, तो मैंने आपके दिल में एक थॉट पैदा कर दिया, अभी वो एक्शन को आपको करना है। With these few words, once again, I thank you for all of you and for giving me this time to share my views and concerns, especially of Tawang और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले future के लिए। Thank you very much.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कितपी ब्लॉक के असिस्टेंट कमिश्नर श्री संगे नुर्बू से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध विषय पर भाषण का अंश, कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोक के अंतर्गत। इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग के लेफ्टिनेंट कॉलोनल मिनी सक्सेना एजुकेशन ऑफिसर से आर्मी में करियर एवं भर्ती विषय पर वार्ता का अंश।
2: All lovely students here. I am representing Indian Army today. I am an Indian Army personnel. So I have come here to tell you about Indian Army and how you can be part of Indian Army. We have so many career options. You are free to choose whatever. But I am here to tell you some brief facts about Indian Army and how I can help you to join Indian Army. Okay. Is picture mein aap kisi ko pehchante hain? What all did you see?

You can just say thanks. Adventure activities. Yeah? People in uniform. People doing some other activities. So this is all we do. Okay, I have ridden a tank. I have fired a missile. I have done every adventure activity which you can just think of. You know? I have climbed Mount Everest in 2012. You can see that. I'm not boasting about myself. No, no, no. The point is not this. This is not my point. Understand? What I'm trying to say, I'm not boasting ki main ye karti hu. I'm just saying ki I have done it. Anybody sitting amongst you can also do that. Okay? These are the opportunities. It's not only that we work. We do adventure. We do what you can just think of. We do that. Okay? We do lots of activities. Jobs tabhi soch bhi nahi sakte hoge, wo hum karte hain. So, jo bhi pictures humne dekhi, most of things everybody does. And you can also do if you become part of Indian Army. So, I can just tell you in brief how you can join. तो अभी जो छोटे बच्चे हैं, जो 10th onwards वाले बच्चे हैं, वो ज्यादा relate कर पाएंगे, मतलब वो समझेंगे कि उनको आगे क्या सोचना है, क्योंकि 10th class के बाद हम सभी क्या करते हैं, career के बारे में सोचने लगते हैं, है ना? तो छोटे बच्चे दस देखेंगे, वो सोच सकते हैं कि हम NCC लें, जो 8th standard onwards है, वो बच्चे NCC के through अपने आप को expose कर सकते हैं army में, navy में और air force में, और जो 10th class के बाद वाले बच्चे 11th and 12th, they can really think of appearing for the examination. Okay, so we'll start with that. Okay, so there are two ways you can join Indian Army. First is 10+2 entry level. 10+2 is for NDA, National Defense Academy, or if there is technical entry scheme also after 10+2, you can join. Okay, and after this, second is graduate level entry. Now, graduate level entry, you have two type of commission. You understand what is commission? When you join services, you get a commission. President of India appoints you. Okay? So we get commission. Some people get it for 20 years. That is permanent commission. Some people get it for 5 years. Not 10+4. Not 5 years. This is 10+4. Some people get commission for 10 years. But both of them get commission from President of India. Right? So two types of. You can serve army for 10 years or you can serve army for 20 years and more. As per your age criteria. Okay. Then you have CAPF, Central Armed Police Forces, and TA, Territorial Army. Also, you can join. Okay. Uske baad hamara last. How many of you have heard about Agnipath scheme? Suna hai aapne? Okay. I'll tell you about it. Not too worried. So, maine abhi aapko bataya ki aap army mein 10+2 karke aa sakte hain. Then you can join NDA. Earlier, I think 5 years back, NDA was only used to be for boys. Now girls can join too. Girls can also join NDA. That eligible criteria is +2 in any stream. Okay? Your maths, your English, your communication skills, everything should be good and any stream can appear. आप किसी भी स्ट्रीम में होंगे आप एनडीए के लिए अपीयर कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. 3 years यू विल बी नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे. आई वॉज इंस्ट्रक्टर देयर. आई हैव टॉट. आप जैसे छोटे बच्चे ही वहाँ पे आते हैं और वो ऑफिसर्स बनते हैं. ओके. सो उसके बाद 10+2 के बाद आप आ सकते हैं टेक्निकल एंट्रीज की, विच इज ऑल्सो 10+2. ओके. तो +2 के बाद भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप टेक्निकल एंट्री है तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. बट फॉर टेक्निकल एंट्री यू हैव टू बी अ PCM, यानी कि साइंस, मतलब 12th में साइंस होना बहुत मैंडेटरी है. ओके. ओके. आफ्टर ग्रेजुएशन, यू नो व्हाट इज ग्रेजुएशन ऑल ऑफ यू? आफ्टर +2 यू ज्वाइन सम कॉलेज, यू नो, यू डू सम ग्रेजुएट. अंडर ग्रेजुएट कहते हैं ना जिसको. सो आफ्टर 3 years, 4 years, जो भी कॉलेज के क्राइटेरिया है, 4 साल बाद भी आप CDS. +2 के बाद क्या था? एनडीए. और आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन. दिस इज अ रिटन एग्जामिनेशन. यू अपीयर एंड देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन. बट देन यू विल नॉट ज्वाइन एनडीए. यू विल ज्वाइन IMA और OTA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई. गया एंड वन मोर इज देयर. ओके. सो दोनों तरह से. +2 के बाद जो बच्चे +2 के बाद नहीं कर सकते वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं. ओके. When you opt for BTEC or something, after BTEC also college selection schemes are there. आप सीधे directly without any written examination भी SSB clear कर सकते हैं. मतलब army का exam interview face कर सकते हैं. उसमें आपको written examination नहीं देना. पर अगर आप एक normal graduate है तो आपको CDS written exam भी appear करना होता है. Okay. Then TGC, that University Grant Commission.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 190 माउंटेन ब्रिगेड तवंग के लेफ्टिनेंट कॉलोनल मिनी सक्सेना एजुकेशन ऑफिसर से आर्मी में करियर एवं भर्ती विषय पर वार्ता का अंश। इसके साथ आज का कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग यहीं पर समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। सरकार ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर लगातार करीबी नजर बनाए रखे हुए हैं। भारत ने एक बार फिर हर्मुज जलडमरु मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापारिक गतिविधियों के सुचारू संचालन की आवश्यकता पर जोर दिया। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये दुनिया भर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

0: अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि ईरान के उप मशीन प्रमुख को तलब किए जाने के बाद मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि भारत ने तेहरान के समक्ष अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया है कि इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई है तथा कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ईरानी पक्ष के समक्ष इस घटना पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए ऐसे हमलों को शीघ्र रोकने की मांग की है। सेना ब्रिगेड के तत्वाधान में भारतीय सेना ने आज दिरंग के सेपर में फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया। समारोह में वेस्ट कमेंग जिला उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार, 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राहुल मिश्रा, दिरंग एडीसी, पंचायत प्रतिनिधि, गांव बूढ़ा तथा चयनित विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे। जांग और दिरंग के सीमावर्ती गांवों के कुल 25 विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSEE 2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित वोट्स पार्क सैनिक स्कूल में प्रवेश प्राप्त किया है। ये उपलब्धि भारतीय सेना द्वारा अपनी जनसंपर्क एवं मार्गदर्शन पहल के तहत प्रदान की गई निरंतर कोचिंग, मॉनिटरिंग और मार्गदर्शन का परिणाम है। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग द्वारा आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR के स्थापना दिवस के अवसर पर जांग में इनपुट वितरण सह ICMR स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय किसानों के बीच वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था, जिसमें जांग थिम्बू ब्लॉक के युथुम्बू और दोंगसे गाँव के 57 किसानों ने भाग लिया। किसानों ने तकनीकी सत्रों के सक्रिय भागीदारी करते हुए आधुनिक कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श किया। भारतीय सेना के स्पेयर हेड डिवीजन के तत्वाधान में स्पेयर हेड गनर्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत सामुदायिक जन कल्याण के लिए पहल सफलतापूर्वक संचालित की है। इस दौरान ईस्ट सियांग जिले के मोतुम, सिगार और मबो क्षेत्रों के लाभार्थियों को 6 पोर्टेबल मोबाइल शौचालय सौंपे गए हैं। कार्यक्रम सक्र अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधियों, गाँव के अधिकारियों, विद्यालय प्रतिनिधियों तथा स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। ये पहल दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन और स्थानीय समुदायों के सहयोग से जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारतीय सेना के स्पेयर डिवीजन के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 15 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, पपुमपारे, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, लेपारादा, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अमेरिका के टेक्सास स्थित द लास्ट स्टेडियम में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन ने वर्ष 2010 में विश्व कप जीतने के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य रखेगा। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल के मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर अंतिम चरण में अपनी जगह बनाई थी। और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA पर वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बयान में दोनों पक्षों ने विभिन्न वार्ताओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की और कई मुद्दों में व्यापक सहमति बनाई है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 87 करोड़ 10 लाख डॉलर से अधिक रहा, जबकि वर्ष 2024-25 में यह 67 करोड़ 90 लाख अमेरिकी डॉलर रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, न्यूज रेड बाय नारंग कोयांग। न्यू दिल्ली हैज सेड दैट इट इज क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। इट हैज अगेन कॉल्ड फॉर सेफ एंड अनइम्पीडेड नेविगेशन and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said this is the key for ensuring the economic and energy security of people across the world. He said the ministry has issued a statement after summoning the Deputy Chief of Mission of Iran. Mr. Jaiswal said New Delhi conveyed Tehran its deepest concerns and that it strongly condemned what had happened. He said a precious life has been lost and several Indian nationals have been injured.

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म बुच द प्राइड ऑफ इंडिया से ये गीत। इस गीत के साथ कार्यक्रम को अमित तरानी यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं और प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म काला बाजार से नितिन मुकेश और चांद माथुर की आवाज में। पयाम सईदी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है असम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मासूम से। शब्द रचना है गुलजार की व संगीत है आर डी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है नई वाला हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप है वेद मीता और अलका मीता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे साहिर लुधियानवी द्वारा शब्द फिल्म धनवान से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है हृदयनाथ मंगेशकर ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है साय की शिरडी से आप है सुरेश मलोडे, वर्षा मलोडे, श्रद्धा मलोडे और मानसी मलोडे।

श्रोताओं, आप सुने कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चलते चलते से अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर के व संगीत है जतिन ललित का। इस गीत की हमें फरमाइश की है रिगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बॉर्डर से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है दतरंगी बत्तापरा छत्तीसगढ़ से आप है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 12:30 बजे से फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया, 6 ने कांस्य पदक जीते। ताजा जारी ITTF विश्व रैंकिंग में मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय डबल्स जोड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया और जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से टोक्यो में शुरू हुआ। PV सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं इंग्लैंड में चल रही भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला से, जहां पहला मुकाबला आज बर्मिंगम में खेला जा रहा है श्रृंखला का, और मेजबान इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 259 रन का लक्ष्य दिया है, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने तय समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट खो करके 56 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बना करके ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नवाद पारी खेली, उनके अलावा लियम डॉसन ने 68 रन बनाए और बेन डकेट ने महत्वपूर्ण 43 रन का योगदान दिया था सलामी बल्लेबाजी करते हुए। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए। लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे के हाथ एक एक सफलता लगी और इस एक सफलता के साथ ही जसप्रीत बुमराह भारत के लिए 150 विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं। और गेंदबाजी के अलावा भारतीय टीम ने फील्डिंग में भी आज काफी शानदार प्रदर्शन किया, और अगर अभी की बात कर ली जाए तो भारतीय टीम ने 57 रन बना लिए हैं। 11वां ओवर का खेल जारी है, इस समय रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली 5 रन बना करके पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल 29 रन और शेयर्स अय्यर 5 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए हैं। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 12:30 बजे से फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाना है। ये मैच टेक्सस के डलास स्टेडियम में होना है। दोनों टीमें अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में मोराको को और स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: आज रात से फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो जाएगा, जहां से हर टीम फीफा विश्व कप की ट्रॉफी से मात्र 2 कदम दूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 2 कदम की छोटी मगर बेहद रोमांचक दूरी को कौन सी टीम सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है। आज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। विश्व कप की ये दोनों फेवरेट टीमों में से किसी एक का सफर आज रात समाप्त हो जाएगा, जबकि कोई एक टीम खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ये मैच विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले में से एक होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के विश्व कप में अब तक के सफर पर नजर डाली जाए तो फ्रांस फीफा विश्व कप 2026 में कोई भी मुकाबला नहीं हारा है। फ्रांस ने खेले गए 6 मैच में से 5 मैच जीते हैं, जबकि एक ड्रॉ रहा है। इस दौरान फ्रांस ने कुल 16 गोल दागे हैं और केवल 2 गोल खाए हैं। टीम की मुख्य ताकत उसका आक्रामक खेल है, वहीं टीम की दूसरी मुख्य ताकत 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में टॉप पर बने हुए किलियन एम्बाप्पे हैं। उस्माने डेम्बेले भी 5 गोल कर चुके हैं और लोगों की नजर सबसे अधिक असिस्ट करने वाले माइकल ओलिसे पर भी है, जबकि दूसरी तरफ स्पेन की टीम है जिसको अपने डिफेंस पर भरपूर भरोसा है। पूरे विश्व कप के दौरान अब तक स्पेन ने मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से, प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से और राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था। डिफेंस शानदार होने के साथ साथ टीम के पास मिडफील्ड में रोड्री, पेड्री और ओल्मो जैसे खिलाड़ी हैं। अटैक लाइन पर मिकेल ओयारजाबल 4 गोल के साथ टीम में लीड कर रहे हैं। अगर दोनों टीमों के आमने सामने के मुकाबले की बात की जाए तो हाल के समय में दोनों के बीच हुए 38 मैच में 18 स्पेन के और 13 फ्रांस के नाम रहे हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। आंकड़ों में दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं, लेकिन फ्रांस का अटैक उसको स्पेन के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभावी बनाता नजर आता है। ऐसे में देखना होगा कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम फाइनल की ओर अगला कदम बढ़ा पाती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जून 2026 को जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो 48 टीमें थी और 104 मुकाबले खेले जाने थे। आज 4 टीमें बची हैं, 4 मुकाबले बचे हैं जो तय करेंगे कि विश्व कप का विजेता कौन होगा, उपविजेता कौन होगा, तीसरे स्थान पर कौन होगा और कौन सी टीम चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाएगी। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, जहां भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जकार्ता में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अंडर 19 वर्ग में भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि 6 ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

0: U19 महिला कैटेगरी में सभी 8 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। चाहत ने 60 किलोग्राम में चीनी ताइपी की पे चुनतसाई पर 5-0 की शानदार जीत हासिल की। वहीं 75 किलो वर्ग में अंशिका ने पहले राउंड में चीनी ताइपी की एन चीत सिंह के खिलाफ रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट से जीत दर्ज की। वियतनाम की अपनी प्रतिद्वंदी के मुकाबले जारी न रख पाने के कारण मेघा श्योकंद 80 किलो वर्ग में आगे बढ़ गई हैं। वहीं प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में चीनी ताइपी की शू शियन वांग के खिलाफ पहले राउंड में आरएससी जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। पहले से जीते हुए बॉक्सर्स के साथ भारत ने अंडर 19 महिला कैटेगरी में सभी 8 फाइनलिस्ट पक्के कर लिए। वहीं अंडर 19 पुरुष कैटेगरी में 2 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। 55 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोरिया के ह्योन मिन ली को दूसरे राउंड में आरएससी से हराया, जबकि शुभम राजपूत ने 90 किलोग्राम में किर्गिस्तान के एटबेक बर्दी मुरातोव के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की। सेमीफाइनल में हार के बाद 6 भारतीय मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी अपने नाम किए। इससे पहले अंडर 23 वर्ग में भारत के 8 मुक्केबाज फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें 5 महिला और 3 पुरुष शामिल है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैंप।
1: तो अंडर 19 और अंडर 23 दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे और कुल 18 भारतीय खिलाड़ी इन दोनों वर्गों के महिला और पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स के लिए अपने अपने स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज जारी की गई ताज़ा ITTF विश्व रैंकिंग में भारत की 3 डबल्स जोड़ियों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। भारतीय डबल्स जोड़ियों की अगुवाई मानव ठक्कर और मानुष शाह कर रहे हैं, जो पुरुष डबल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं, और ये किसी भी भारतीय डबल्स जोड़ी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर मयूर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष रूप से हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से काम किया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
1: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि कई राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक मदद और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी।
2: ऊर्जा उत्साह को बताने वाला, हर वक्त अपनी मुस्कुराहट के साथ, अपनी आवाज के साथ चहकाने वाले मयूर के साथ जोड़ा गया है इस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस इवेंट को। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सभी साथियों को जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
1: और इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को देश के खेलों की राजधानी के रूप में विकसित कर रही है।
3: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले लोगों, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
1: तो कह सकते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। और इसके बाद दिल्ली एक और बहुत बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा, जो कि होगी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन की, जो कि 17 अगस्त से शुरू होगी और 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी अरीना में नई दिल्ली के चलेगी। तो कह सकते हैं कि एकाएक एक के बाद एक कई बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी दिल्ली को मिलती हुई नजर आ रही है।

0: और अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां हरियाणा ने अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तीनों टीम खिताब जीत लिए हैं। हरियाणा की टीम ने पुरुषों की फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिलाओं की कुश्ती में पहला स्थान हासिल किया।
1: हरियाणा ने पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 200 अंक के साथ खिताब जीता। इसके बाद ग्रीको रोमन में 195 अंक हासिल किए और तीन दिन तक चली इस प्रतियोगिता के आखिर में महिलाओं की कुश्ती में 183 अंक के साथ क्लीन स्वीप किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुरुषों की दोनों कैटेगरी में उपविजेता रही। वहीं महिलाओं की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 160 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पुरुषों की फ्री स्टाइल में पंजाब, ग्रीको रोमन में उत्तर प्रदेश और महिलाओं की कुश्ती में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे। पदक के अलावा इस चैंपियन शिप का चयन के नजरिए से भी काफी महत्व था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के आगामी अंडर 23 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जबकि 18 से 20 वर्ष की उम्र के बेहतरीन पहलवानों को आगामी सिलेक्शन ट्रायल के नतीजों के आधार पर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेलने का अवसर मिल सकता है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कुश्ती की बात तो हरियाणा कोई खिताब ना उठाए ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। जिस प्रकार का बुनियादी ढांचा कुश्ती को लेकर के इस राज्य ने विकसित किया है और देश को लगातार समय समय पर एक से दिग्गज एक पहलवान दिए हैं। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में पीवी सिंधु तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
2: जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिंग शिंग को 21-14 और 21-11 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और जूली मैकफर्सन को 21-16 तथा 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी को एक सेट के बाद ही मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा, जबकि हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पुरुष सिंगल्स में शानदार फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुल्लावत विटिडसरन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के कोकी वितानबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की हुआंग यू हसुन का सामना करेंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब कार्यक्रम में चलते चलते एक बार वापस बर्मिंगम में खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के स्कोर बोर्ड की तरफ नजर घुमा लेते हैं। भारत ने 13 ओवर खत्म होने पर 2 विकेट खोकर के 70 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 34 और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं और दोनों खिलाड़ियों ने 22 रन की पार्टनरशिप कर ली है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार

0: यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
1: This is also one of the most ambitious.
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता

0: 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason.

0: फेयरनेस रिस्ट्राइंट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
4: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
3: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
4: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns